0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जगमोहन सुरसागर की आवाज में ये गीत एल्बम द बेस्ट ऑफ जगमोहन।

रंग तिरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अदनान सामी की आवाज में तेरा चेहरा। इस एल्बम का गाना समीर के बोल, संगीत है अदनान सामी का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: पंकज उधास की आवाज, शब्दकार शेवन बिजनोरी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम मुस्कान।

0: കരം.
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग. लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल. शायर हैं अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी.
2: सरकती जाए है

काले वस्त्र पर मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाले वस्त्र पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाले वस्त्र पर उनको उदू का खौफ है इतना।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में ये गाना समीर के बोल संजीव दर्शन का संगीत एल्बम तलाश।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत पोहनकर की आवाज में ये गीत। एल्बम का नाम पिया बावरी, गीत और संगीत अजित अभिजीत पोहनकर का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला गीत है अनोखी रात, इस फिल्म से मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल, संगीत है रोशन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए दिल का हीरा। इस फिल्म का गाना आशा भोसले, मोहम्मद रफी और अमित कुमार की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं साजन बिना सुहागन, इस फिल्म का गाना येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, इंदिवर के बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज में, भरत व्यास के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वीर जारा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रीता मजुमदार की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको

0: लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गृह प्रवेश। इस फिल्म का गाना भूपिंदर की आवाज, बोल गुलजार के संगीत है कनू रॉय का।

0: हाँ क्यों, क्या किया है मैंने?
1: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से।
0: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

0: गृह प्रवेश फिल्म का ये गाना आपने सुना भूपिंदर सिंह और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में, बोल गुलजार के संगीत कनू रॉय का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: हम पंछी एक डाल के, इस फिल्म का गाना आशा भोसले और साथियों की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना, संगीत एन दत्ता का।

बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल, और अब किनारा फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजें, बोल गुलजार के हैं संगीत आरडी बर्मन का।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कण कण में भगवान। इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज, भरत व्यास के बोल और संगीत है शिवराम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आज की जो इबारत है जो हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। कहना है आज तुमसे कुछ कहना है, हाँ मुझे कुछ कहना है। तुम्हारी झुकी झुकी नजर कहती है तुम मेरे थे और मेरे ही हो। आज तक जो कहा तुमने कहा, फिर दिल ने भी तो दिल से जाने क्या कहा। मैंने तो फूलों से कहा था और चंद्रमा से कहा था कि जाओ उनसे कह दो, पर जाने क्या मैंने कही और जाने क्या उसने सुनी। बात बस कुछ कहने की नहीं है, बात ये है कि हम क्या कहते हैं। हमारे कहने की कुछ सीमाएं हैं, सोच समझ कर कहें। कहे हुए शब्द वापस नहीं आते, उतना ही कहें जिससे आपसी सद्भावना बनी रहे। माँ ने भी यही कहा था, कभी दिल किसी का न तोड़ो। अब ये न कहना कि हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ था अगर कहने पे आते। ये आज की इबारत है या टेक्स्ट है जो हमने विविध भारती का जो फेसबुक पेज है उस पर पोस्ट किया है। बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ा है और बहुत सारी बातें भी लिख भेजी है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो दिल के किसी कोने में बहुत देर से चुपचाप बैठी होती है, किसी से कह भी नहीं पाते। कभी लगता है कह दूं तो बोझ हल्का हो जाएगा, कभी डर लगता है कि सुनने वाला समझ पाएगा या नहीं। पर सच ये है कि जो बातें हम नहीं कहते वही हमें सबसे ज्यादा थकाती है। कितना कहना है, किससे कहना है, मन इसी उथल पुथल में रहता है। लेकिन कहना जरूरी हो तो उतना ही कहें जितने से दिल हल्का हो जाए। कही गई बातों के शब्दों की गिनती मायने नहीं रखती, मायने रखती है उन शब्दों की सच्चाई और गहराई जो सुनने वाले पर असर कर जाए। इसलिए आज इतना ही कहूंगा कि जो महसूस होता है उसे दबाइए मत, जो दिल से अपने लगे उन अपनों को बताइए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा रोइए और दिल की सुनिए, क्योंकि जिंदगी छोटी है, कहने के लिए कल का इंतजार मत कीजिए। बहुत सुंदर बात आपने लिखी है। एक हमारी साथी ये भी लिख रही हैं कि शब्दों का खेल भी अजीब है, कभी आंखें सब कह देती हैं तो कभी जुबां भी खामोश रहती है। लेकिन बात सिर्फ कहने की नहीं मर्यादा की है। सोच समझ कर बोले गए शब्द दिलों को जोड़ते हैं, जबकि बिना सोचे समझे कही गई बात बरसों के रिश्ते तोड़ सकती है। बड़ों ने हमेशा यही सिखाया है कि वाणी में मिठास रखो और किसी का दिल मत दुखाओ। इसलिए उतना ही कहें जिससे आपसी प्यार बना रहे। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब गाने सुनने की ओर हम रुख करते हैं। कार्यक्रम का जो पहला गाना है ये पड़ोसन फिल्म का गाना है। किशोर कुमार की आवाज से राजेंद्र कृष्ण के बोल है। सुनील दत्त सायरा बानू पर फिल्माया गया है, साथ में किशोर कुमार भी इसमें दिखाई देते हैं। संगीत किसका है ये आपको बताना है। कुछ हमारे आज के जो सवाल हैं वो हम आपसे इस गाने के बाद पूछेंगे।

0: इस गाने में कहने का जो अंदाज है वो आपने देखा ही होगा, और बड़ा लुभावना अंदाज है कि एक व्यक्ति जो गीत अच्छे से गा नहीं सकता लेकिन उसका दोस्त पीछे से गाता है, और पहला जो दोस्त है वो सिर्फ होठ हिलाता है और इस तरह से बात बन जाती है कहने की। आर डी बर्मन का ये बड़ा ही प्यारा सा संगीत आपने सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिए। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि पहले हमारी दादी माँ कहती थी कि तुम्हारे मन में जो भी बात है तुम वह लिखकर भगवान जी के सामने रख दो चिट्ठी में, भगवान जी तुम्हारे मन की सुन लेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें हम किसी से नहीं कह पाते हैं और मन बड़ा भारी रहता है, तो ऐसा करने से मन भी हल्का हो जाता है और एक मन से सोच भी निकल जाती है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि कहना यानी शब्दों का सफर, दिल की धड़कन की रवानी, कभी कभी मौज मस्ती प्यार की बोली मस्तानी, तो कभी खामोशी से बोली आंखों की जुबानी, मन की फुसफुसाहट की निशानी, तो कभी बुलंद आवाज में की गई देशभक्ति की वो पुकार रूहानी, मुलायम लफ्जों में सांत्वना देती सहानुभूति की निशानी, तो कभी कभी ओजस्वी विचार जो समाज को दे रोशनी। इस तरह कहते कहते बन जाती है जीवन कहानी बड़ी ही सुहानी। बहुत धन्यवाद आपका इतनी प्यारी बातों के लिए। और जो कुछ आज के हमारे सवाल है कहने पर से, तो पहली बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत अच्छी बातें कही हो और उसने उन बातों को माना भी हो और उन बातों का सामने वाले पर इतना असर हुआ कि उसकी दुनिया ही बदल गई, और बाद में उसने आपसे आकर के धन्यवाद कहा कि आपने इतनी अच्छी बातें मुझसे कही थी और उसकी वजह से हमारे जीवन में बहार आई। अगर ऐसी कोई घटना आपको याद आती हो तो हमें जरूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बॉबी फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। इसमें दो आवाजें हैं, एक तो लता मंगेशकर की आवाज है और दूसरी आवाज किसकी है यह आपको बताना है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना आपको सुनवाते हैं।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम, तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

लता मंगेशकर के साथ जो दूसरी आवाज है वो शैलेंद्र सिंह की आवाज है। आपके सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। एक साथी की ये बात है कि आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में सबको बहुत कुछ कहना है पर सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है और धीरज भी नहीं है। एक साथी हमारी लिख रही है कि शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। किसी के बात करने का अंदाज इतना मृदुल, इतना मधुर होता है कि लगता है उनका हर शब्द शहद जैसा हो और उनके होठों से शब्द फूलों जैसे झड़ते हैं। मन करता है बस वो कहते ही जाए, कहते ही जाए और हम अपलग से उनको सुनते रहें। वहीं दूसरी तरफ कर्कश व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से हर कोई बात करने से कतराता है क्योंकि उनके शब्द तीर की तरह चुभन देने वाले होते हैं। अतः बात करने का तरीका भी एक कला है कि आप किस तरह अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं जिससे कि मकसद भी जाहिर हो जाए और संबंधों पर भी कोई आंच न आए। जी हाँ, कहने की जो मर्यादा होती है या तरीका होता है बहुत मायने रखता है। हमने आपसे पूछा कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिससे आपने बहुत कुछ अच्छी बातें कही हो, उसने आपकी बातें मानी हो और उसके बाद उसका जीवन बदल गया हो और उसने आपको आकर के कहा हो कि बहुत धन्यवाद, आपने हमें मुझे इतनी अच्छी जो बातें कही थी उसे मैंने अपनाया। ऐसा कोई उदाहरण है आपके सामने तो हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और ख्वाब इस फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज, मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना है। गीत और संगीत किसका है आप बताइए हमें।

जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गाना प्रदीप का लिखा हुआ, दत्ताराम का संगीत। एक हमारे साथी की ये बात कि कहना हमारे हाथों में होता है पर उन्हीं शब्दों का अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग लगा लेते हैं। कहना हमारे हाथ में है पर उसका सही अर्थ समझना दूसरे के हाथ में है, यही समझ गए तो ठीक वरना मन मुटाव ही हो जाता है। एक साथी ये भी लिख रही है कि कहना तो सबको होता है पर सुनने वाला कोई प्यारा सा दोस्त हो तो फिर क्या कहना। कहने को बहुत सारी मस्ती हो सकती है पर ज्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी ज्यादा से सब बिगड़ भी जाता है और फिर उदासी आ जाती है हमारे हिस्से में। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जिंदगी में हमेशा बड़े काम ही याद नहीं रहते, कभी कभी किसी के कहे गए दो शब्द भी उम्र भर साथ रहते हैं, इसलिए जहां मौका मिले किसी का हौसला बढ़ाइए, किसी की बात सुन लीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दीजिए, क्या पता आपकी यही छोटी सी अच्छाई किसी के मुश्किल दिन में थोड़ी सी रोशनी बन जाए। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए कि कभी कोई मुश्किल में है तो हमारे हौसले से भरे हुए दो शब्द, प्यार के दो शब्द उसके लिए मरहम की तरह काम करते हैं और उसका जीवन संवर जाता है। तो ऐसा भी होता है, हमने आपसे पूछा कि ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप हमें बताइए, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा आपने नहीं लिखा है। चलिए हम आपसे एक अगली बात ये पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत साफ दिल से कोई बात कही हो लेकिन उसे वो बात चुभ गई हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात कही हो और उस बात ने सामने वाले व्यक्ति को इतनी खुशी दे डाली कि उसका जीवन ही बदल गया। ऐसी कोई बात हो तो आप हमें बताइए। चलिए अगला गाना अब आपको हम सुनवा रहे हैं। ये गाना है मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल हैं, एस एन त्रिपाठी का संगीत है। आपको बताना है फिल्म का नाम। जी हाँ, कौन सी फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

ये जिस फिल्म का गाना है उस फिल्म का नाम है कुंवारी, और 1966 की यानी कि 1966 की ये फिल्म है। कुछ श्रोताओं ने इस बारे में सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि यूं तो अपनी बात सभी कह देते हैं पर दूसरे की गलती पर या सच बात को मौके पर और किसी के मुंह पर कहना हरेक के बस की बात नहीं होती। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कहना जितना सहज है उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण भी। सुकरात ने कहा था कि बोलिए ताकि मैं आपको देख सकूं। कथन की सत्यता, स्पष्टता और मिठास ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सच्चा परिचय देती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कहना भी एक कला है और चुप रहना भी। कुछ बातें शब्दों की मोहताज नहीं होती, आंखें कह देती है, खामोशी समझ लेती है और कभी कोई फूल या चांद हमारी तरफ से वो बात कह जाता है जिसे हम कह नहीं पाते। मगर रिश्तों में शब्दों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। होठों से निकला हर लफ्ज सामने वाले के मन में कहीं ठहर जाता है। रिश्तों की गरिमा और मिठास बनाए रखने के लिए हर बात कह देना जरूरी नहीं, कुछ जज्बातों को दिल की तहों में महफूज रख देना ही ठीक होता है। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। शाम तेरे कितने नाम, इस फिल्म का गाना हेमलता की आवाज है, अनजान के बोल रविंद्र जैन का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है यह आपको बताना है।

सचिन और सारिका पर फिल्माया गया ये गाना आज तक जो कहा तुमने कहा। जी हाँ, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं या हमारे आसपास होते हैं या हमारे दोस्तों में या ऑफिस में या घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब तक कहते हैं हम सुनते हैं, लेकिन जब हम अपनी कोई बात कहने जाते हैं तो वो तुरंत ही उस बात को वहीं पर समाप्त कर देते हैं, काट देते हैं और अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। क्या आपके जीवन में भी या आपके आसपास या आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है कि जिनको बहुत कहने की आदत है पर सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं? और जब ऐसा होता है तब आपको कैसा लगता है, क्या महसूस होता है कि सामने वाला बोले जा रहा है, कहे जा रहा है, लेकिन आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं? तो ऐसे लोगों के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि कहने की बात यह है कि मंजू जी आज कुछ कम सुने सुंदर नायाब गीत आप सुनवा रहे हैं तो ये भी हमें अच्छा लग रहा है। एक हमारी साथी ने ये बात लिखी है कि मुझे कुछ कहना है कि जब मेरे पतिदेव इस दुनिया में नहीं रहे तब मेरे पापा ने एक बात कही थी और आज

मुझे याद है पापा ने कहा, बेटा जब तक तुम सच को स्वीकार नहीं करोगी, भ्रम में रहोगी और पीछे मुड़कर देखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। आगे देखो, वो बात आज तक याद है और यही बात मैं अपने जैसी जो भी मेरी दोस्त है जिन हालातों से वो गुजर रही है उन्हें मैं ये बात कहती हूं या सलाह देती हूं। धन्यवाद आपका। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि ये रचना यानी कि इस टेक्स्ट के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये संदेश देती कि जब जुबान पर लगाम और दिल में रिश्तों के लिए सम्मान हो तो खामोशी भी कड़वे शब्दों से ज्यादा असरदार और गरिमामयी होती है। बोलने की आजादी के साथ एक सीमा भी जुड़ी होती है। कहे गए शब्द कभी वापस नहीं लौटते, इसलिए भाषा में सद्भावना और संतुलन होना जरूरी है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रखवाला फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है या आप बताइए।

रखवाला फिल्म का गाना आपने सुना, धर्मेंद्र और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात के कहने में तो सिर्फ तीन शब्द समाये हैं, मगर अक्सर लोग नहीं जानते जो कुछ भी हम कहते हैं वो हमारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो भी कहो सोच समझ कर कहो, क्योंकि एक बार मुंह से निकले लफ्ज फिर वापिस नहीं आते। कोशिश करें कि हम हमेशा कहने में सुंदर कहें और सुनने में धीरज बरतें, क्योंकि आपके कहे कटु शब्द में दांत तो नहीं होते, पर वे शब्द काट ले तो उनके जख्म कभी नहीं भरते। कहने में बड़ी शक्ति है, हाँ शब्दों के चयन ही आपकी असल पहचान होते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मिली फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज। मिली फिल्म का गाना है ये, लता मंगेशकर की आवाज है, एसडी बर्मन का संगीत है। गीत किसने लिखा है ये आप बताइए।

योगेश का लिखा हुआ ये गाना जो अभी आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बात सुनाने में सदा उत्सुक रहते हैं, मगर सामने वाले की बात सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखते। बात पूरी भी नहीं होने देते और अपनी बात सुनाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ये कहना पड़ता है कि प्लीज सुनिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा कहना पड़ता है। एक साथी ये भी लिखते हैं कि कौन सुनेगा, किससे कहें हम, इसलिए चुप रहते हैं। जी हाँ, सही बात है कि जब तक कोई सुनने वाला ना हो तब तक कुछ भी कहना बेमानी है। अक्सर लोग ऐसा ही सोच लिया करते हैं और सवाल भी बहुत उम्दा है, लेकिन सांसारिक झंझावातों में उलझा मन ये समझ ही नहीं पाता कि ये संसार तो एक दिखावा है और असली कहने की नहीं अपितु सुनने वाला कोई और नहीं अपितु स्वयं हमारे ही अंदर है और उसे हमें पहचानना है। धन्यवाद आपका। चलिए, भरत मिलाप इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें, भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का।

भरत मिलाप फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है, कहते हैं इसी जीभ से विष और रस दोनों निकलते हैं, लेकिन चुनना तो हमारा स्वभाव है, कही हुई बात कभी वापस नहीं आती, इसलिए सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहूं शीतल होए। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, एक झिझक सी होती है और कह नहीं पाते कि क्या सोचेंगे, दिल की बात दिल में ही रह जाती है, मन में कई विचार उठते हैं, कभी कभी मुंह से निकली हुई बात दूसरों पर बुरा असर डाल सकती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो समय पर बोल देना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जो लोग ज्यादा बोलने के आदि होते हैं उनको अक्सर याद नहीं रहता कि उन्होंने पिछली बार कौन सी बात कही थी और कौन सी नहीं, वो याद रखने के मामले में असफल होते हैं, कारण कि वो धैर्य से कभी कोई बात ना सुनते हैं और ना कहने के मामले में भी वो अधीर ही नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अदालत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, ये खूबसूरत सा संगीत किसका है और कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये आपको

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया और नरगिस पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। और एक साथी की ये बात कि जब दिल में जज्बात बहुत गहरे हों और अपनों से बात न हो पाए तो खामोशियां भी एक भाषा बन जाती है। ये एहसास बहुत खूबसूरत और थोड़ा दर्द भरा होता है, जहां उम्मीद और तन्हाई साथ साथ चलती है। दिल की बातें और उम्मीद चांद तारों का सहारा होता है। जब कोई अपना दूर होता है तो आसमान और कुदरत ही हमारे हमराज बनते हैं और अनकहे जज्बात कुछ बातें जुबान पर आने से पहले ही आंखों और दिल में बस जाती है। ये उम्मीद होती है कि जो दिल को संभाले रखती है कि एक दिन बात जरूर पहुंचेगी। चलिए अगला गाना प्यासा फिल्म का, ये गाना गीता दत्त की आवाज में।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, ये गाना हम आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन जितना जो हम सुनवा पाएंगे वो आपको जरूर सुनवाएंगे, एक छोटी सी बात के साथ कि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि खुशियां बांटने के लिए हमेशा बहुत कुछ नहीं चाहिए, कभी कभी एक अच्छा शब्द ही काफी होता है। चलिए, चाचा भतीजा फिल्म का ये गाना, शैलेंद्र सिंह की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए।

रणधीर कपूर और योगिता बाली पर फिल्माया गया ये गाना यही था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब इजाजत दीजिए, आप सभी को मंजू द्विवेदी का नमस्कार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Yeah? Hi, hi, hi.
1: लगी मस्त नजर की कतार, हा हा हा, मस्त नजर की कतार, दिल के उतर गई पांव, इन प्यार की राहों में, ओ इन प्यार की राहों में, दिल भी गया, हम भी गए, सच में जिगर है भार, मस्त नजर की कतार. इन प्यार की राहों में दिल भी गया हम भी गए जख्म जिगर है बहार.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम आ चुके हैं और आज मेरे साथ हैं इस मंच पर आरती श्रीवास्तव। आपको भी नमस्कार आरती।
1: चंचल जी आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: तो नमस्कार के बाद हम बताते हैं कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, मतलब किन विषयों पर बात करें।
1: तो आज हम लेकर आए हैं विषय विलुप्ति की ओर भाषाएं और बोलियां। जो भाषाएं कहते हैं ना, हमारा देश जो है वो विविधता से भरा हुआ है।
0: हाँ।
1: तो इसमें बहुत ही अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनमें से कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो अब विलुप्ति की कगार पर आ गई हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और संवाद के लिए भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबका संवाद करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक जरिया होता है, वो होता है भाषा।
1: बिल्कुल।
0: और कई बार जिनके पास भाषा नहीं होती, वहां इशारों में भी बातें होती है, लेकिन भाषा का अपना एक अलग महत्व है। बहुत सारी भाषाएं हम देखते हैं कि आज जिनका महत्व खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रही हैं, उन्हीं के बारे में बात की जाएगी
1: जी।
0: और आज क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो एक ऐसी शख्सियत की हम बात करेंगे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज वो कौन है?
1: वो है गोदावरी दत्त, जो कि एक चित्रकार है और बहुत ही संघर्षशील महिला है, तो उनके बारे में।
0: और चित्रकार की बात आती है ना, चित्रकारी में बहुत सारी शैलियां होती है ना, अलग अलग तरह की चित्रकारी या रंग बिरंगी पेंटिंग हम बनाते हैं, तो कुछ खास शैली इनकी है।
1: बिल्कुल।
0: उसके बारे में अगर आप नाम से वाकिफ हैं गोदावरी दत्त के, तो समझ गए होंगे, नहीं तो बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए जब हम बात करेंगे गोदावरी के बारे में। और मुझे कुछ कहना है तो क्या कहना है?
1: मुझे कुछ मत कहो इस बारे में, क्योंकि हो सकता है ये चीजें मेरे लिए ही हो, क्योंकि इसमें लिखा है जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना। मुझे खाना बहुत पसंद है, जैसे कि आप जानते हैं, और सारी सखियां, सब सखा, सब जानते हैं कि मुझे खाना बहुत पसंद है।
0: तो हम सब जीते हैं, जीने के लिए खाना वाकई में बहुत जरूरी है। अगर हमें एक सेहतमंद जीवन यापन करना है, तो उसके लिए खाना क्या होना चाहिए, इस बारे में सोचना जरूरी है। लेकिन जब हम खाने के लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो अनाप शनाप किसी भी समय कुछ भी खाते हैं। और खाने के जो बहुत शौकीन लोग होते हैं, वो बहुत सारी चीजें खाते हैं, सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं, ऐसा लगने लगता है।
1: अलग अलग तरीके की चीजों का स्वाद लेना उन्हें अच्छा लगता है, चटोरापन कह सकते हैं।
0: हाँ, चटोरेपन के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि खाने के लिए अगर जब आप जीना शुरू कर देते हैं, तो किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, इस पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं?
1: बिल्कुल, अपने विचार एकदम ईमानदारी से लिखिए आप। हाँ। कि आपको क्या लगता है कि आपको मतलब कभी कभी खाना चाहिए ये चीजें, या फिर हमेशा ही इस तरह से कि आपको हर दूसरे दिन खाना है, ये चीजें आप बताइए।
0: ये सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है, तो हमारे श्रोताओं का क्या कहना है इस बारे में वो जरूर कहिए। और कुछ उपयोगी टिप्स हम बताएंगे, जिसमें कपड़ों की उम्र किस तरह बड़ी की जा सकती है, इसके बारे में बात होगी। और आज क्योंकि 20 तारीख है, आज है सद्भावना दिवस।
1: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि देखिए, सद्भावना का मतलब क्या होता है? सद और भावना, यानी कि अच्छी भावना, अच्छी भावना से किया हुआ कार्य।
0: 20 अगस्त यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती का ये खास मौका होता है, जिस दिन इस दिन को हम आयोजन करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, शांति हो, एकता हो, और सौहार्द की भावना जो है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि विविधताओं का देश है भारत, यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं रही हैं। यही विविधता हमारी ताकत भी है, और सद्भावना दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
0: और इस अवसर पर बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, वहां पर सद्भावना प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है। जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहां पर उन संस्थानों में भाषण, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की जागरूकता की गतिविधियां भी होती हैं। कुल मिला के सिर्फ यही संदेश दिया जाता है कि देश में एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे,
1: बिल्कुल शांति बनी रहे, जिससे कि सब एक दूसरे के लिए सोचें, अच्छी भावना से काम करें।
0: और ये खाली एक संदेश देने की बात नहीं है, संदेश देने का दिन नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए ये बातें आरती। और हम सबको मिलकर ये चीज बड़ी दृढ़ता से संकल्प ले लेना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के सम्मान रखेंगे, प्यार रखेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और इसी तरह तो मिलजुल कर देश एकता और अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा।
1: बिल्कुल। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जहां पर प्रेम है, सद्भावना है, वहीं पर शांति भी है और प्रगति भी है।
0: तो अब गाने में थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रगति करें, गीत
1: सुनते हैं।

0: तुम्हें ध्यान है जो गांवों में घर होते हैं वहां बहुत सारे चित्र बने होते हैं, तो जब ये मैं गाना सुन रही थी ना, बच के शिकारी शिकार करना, तो जानवरों के या किसी जानवर को उसके साथ खेलते हुए, उनका शिकार करते हुए, उनको पालन पोषण करते हुए, इस तरह के भी भित्ति चित्र बनाए जाते हैं।
1: हाँ, वो घर इतने सुंदर दिखते हैं ना, इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे रंगों से जब वो उनको चित्र बने हुए होते हैं उसके ऊपर, हाँ, बहुत सुंदर लगते हैं।
0: और सबसे खास बात ये होती है आरती कि प्राकृतिक जो चीजें हुए उनका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह का, जैसे बहुत सारी पेंटिंग में हम ऑयल पेंट या इस तरह के पेंट देखते हैं ना कि उनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो गांव में भित्ति चित्र बनाए जाते हैं या जो वहां रंग रोगन किया जाता है वो सिर्फ प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो हैं गोदावरी दत्त, जो ऐसे ही रंगों का इस्तेमाल करके अपनी कूची से बड़े खूबसूरत चित्र बनाती हैं, और मधुबनी जो शैली है चित्रकला की उसमें इन्हें महारत हासिल है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि वो पहचाने की नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यह अनुमान लगाया और इनके बारे में बहुत सारे संदेश भी हमें भेजे हैं गोदावरी दत्त के बारे में।
1: बिल्कुल, और जब भी मधुबनी शैली की चित्रकला का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में गोदावरी दत्त का नाम शीर्ष पर आता है। और गोदावरी दत्त का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गांव में 7 नवंबर 1930 को। उस समय मधुबनी पेंटिंग की कोई खास पहचान नहीं थी और न ही उसको लेकर लोगों में ज्यादा जिज्ञासा ही थी।
0: बिल्कुल, ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी, केवल जो शादी ब्याह के मौके होते थे, कोई खास त्योहार है, पर्व है, तो उस अवसर पर जो घर की महिलाएं होती थी बस वही ये पेंटिंग बना दिया करती थी। अलग से कोई कारीगर भी नहीं आते थे, घर की महिलाएं ही बड़ी होशियार हुआ करती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। तो इसी तरह से महिलाएं जो घर की थी बड़ी लगन से चीजों को सीख लिया करती थी, अलग से कोई किसी क्लास में जाकर नहीं सीखती थी। अपने घर की जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं, जो अपने आगे जो वो जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं को देखते देखते वो सीख जाती हैं और होश संभालते बड़े होते, माँ मौसी चाची दादी उनको देखकर घर की जो महिलाएं हैं वो भी चित्र बनाने लगी और इसी तरह से ये उनकी पाठशाला हुआ करता था।
1: बिल्कुल, संयुक्त परिवार होते थे उस समय, तो सब साथ में होते थे, तो कोई कोई भी सिखा देता था, है ना, तो सब आपस में सीख लेते थे ये सब चीजें। तो गोदावरी दत्त जब बहुत ही छोटी थी तब उनके पिता रास बिहारी दास का निधन हो गया और माँ सुभद्रा देवी मधुबनी पेंटिंग की दक्ष कलाकार थी। उन्होंने पूरी लगन से अपनी बेटी को इस कला की बारीकियां सिखाई और जल्द ही गोदावरी की उंगलियां ब्रश पकड़ने में सिद्धहस्त हो गईं और वो दीवारों पर चित्र बनाने लगी।
0: और गोदावरी की औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही कम हुई, शायद 8वीं-9वीं तक ही हो पाई उनकी शिक्षा, और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई उपेंद्र दत्त के साथ में। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इनके तो जो पति थे उन्होंने इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस वक्त तक वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी।
1: बिल्कुल, और वो इस संकट की घड़ी से घबराई नहीं और अपनी माँ से बचपन में सीखी कला को ही उन्होंने अपनी जीविका बनाने का फैसला किया। इस विपरीत परिस्थिति में भी मधुबनी पेंटिंग गोदावरी दत्त के जीवन का सहारा बनी।
0: और जैसे कि हमने कहा ना, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो छोटी उम्र में बचपना भी था उनके अंदर, तो उनके जो वो किस्से बताती हैं, उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ बायोस्कोप दिखाने वाला आया और घर के सारे बच्चे बायोस्कोप देखने लगे, तो उनको भी लगा कि भाई बायोस्कोप देखना चाहिए, उन्होंने जिद की। लेकिन उनकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और वहां से सारे पुरुषों को हटाया और भाई अपनी बहू को बायोस्कोप देखना है इसके लिए वो दिखाने ले गई। और बायोस्कोप में उन्होंने देखा कि माता यशोदा गाय को दुह रही हैं और जो कृष्ण छोटे से बालक हैं वो वहां बस एक गिलसिया लिए खड़े हैं दूध पीने के लिए अपना इंतजार करते हुए।
1: और वो बताती हैं, गोदावरी दत्त बताती हैं कि रात भर बायोस्कोप का वो चित्र उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा, उनसे रहा नहीं गया और लकड़ी के संदूक में से एक कागज निकालकर उस पे उन चित्रों को उन्होंने जो देखा था वो उकेर दिए, फिर उसे छुपाकर वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद उनके जो जेठ जी थे वो आए, वो जमीन से जुड़े एक दस्तावेज की तलाश कर रहे थे जो कहीं मिल नहीं रहा था, सब परेशान थे। गोदावरी से पूछा गया तो अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने अपने संदूक से निकालकर उन्हें दिखाया तो वो वही कागज था।
0: बिल्कुल, जिस पर उन्होंने वो चित्र
1: बना दिए थे।
0: और गोदावरी बहुत खुशी के साथ और मासूम में इसके साथ इस बात को बताती हैं कि सब लोग जब उस दस्तावेज पर जो उन्होंने चित्रकारी की थी उसे देखकर बहुत खुश हुए, उनकी बहुत प्रशंसा भी की। और भूलवश गोदावरी ने उस जो दस्तावेज था उसे कोई सादा कागज समझकर उसके ऊपरी हिस्से पर वो पेंटिंग बना दी थी। और जब भी वो उस घटना को याद करती हैं तो आज भी जो कहते हैं ना कि एक हंसी मुस्कुराहट या प्रसन्नता वो उनके चेहरे पर आ जाती है।
1: तो वो बताती हैं कि उस समय गांव घर में जनेऊ शादी ब्याह और गृह प्रवेश के अवसर पर घर दरवाजों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। उन दिनों परिवारों में शादी ब्याह के अवसर पर दो कोहबर, एक कमलदह, एक दशावतार और बांस का चित्र बनाने की परंपरा थी।
0: तो भाई हमारे कार्यक्रम की परंपरा क्या है, हम बात करते करते गाने भी सुनते हैं, तो सुन ले।
1: हाँ।

0: तो हम बात कर रहे थे गोदावरी दत्त के बारे में। आरती, आपने बताया कि किस तरह के चित्र बनाने की परंपरा थी, क्या चित्र बनाए जाते थे शादी ब्याह के अवसर पर, और ये ऐसा दौर था जब मिथिलांचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांघने तो बहुत दूर की बात हो गई, पुरुषों से बात करने तक की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। उस समय मधुबनी में वस्त्र मंत्रालय का एक कार्यालय खुला, तब ए ग्रेड की पेंटिंग के 10 रूपये और बी ग्रेड की पेंटिंग के 7 रूपये और सी ग्रेड की पेंटिंग के 5 रूपये मिला करते थे। इस तरह से पेंटिंगों को अलग अलग उनके स्तर के हिसाब से बांटा गया था, और गोदावरी जी जो थी वो पेंटिंग बनाने में जुट गई तो उनके चित्र जो थे वो भी बिकने लगे। एक विदेशी कलाकार ने उनकी पेंटिंग के 25 रूपये दिए, मतलब इतने महंगे दाम में उस वक्त खरीदा, और उसके बाद जगह जगह उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चित्तौड़, रांची, त्रिवेंद्रम, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, यानी कहां कहां तक उनके जो चित्र बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनियां लगने लगी, और खूब सराहना होती थी, खूब बिक्री भी होती थी उनके चित्रों की।
1: बिल्कुल, और उन्हें पारंपरिक और मिथकीय विषयों के साथ साथ प्रकृति को सहजता से मधुबनी पेंटिंग में उकेरने में दक्षता हासिल है। वो शुद्ध रूप से भारतीय लोक चार संस्कृति और रीति रिवाज की कलाकार हैं, और अपने विषय पौराणिक आख्यानों एवं प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वो प्रकृति के जो जुड़े हुए होते हैं उसमें वो अपने जो विषय होते हैं उनको लेती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कचनी शैली के अनुसार उनमें धैर्य भी है, जिससे वो अपने चित्रों में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उन गोदावरी दत्त की कला की विशेषता रेखाओं की स्पष्टता में है। रेखाएं एकदम से सही और एक दूसरे से आबद्ध होकर चित्रों में एक तिलिस्म सा पैदा करती हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उन चीजों को उकेरा जाए तो वो कला में जादू असर पैदा हो जाता है।
0: बिल्कुल सही,
1: बिल्कुल। अपनी सुस्पष्ट सोच और तलीनता से रेखाओं में वो मानो प्राण फूंक देती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि वो अपने चित्रों में पर्याप्त विश्राम देकर जो प्रत्येक आकृति है उसको उभरने का पूरा मौका देती है।
0: तभी तो उन्हें इतनी अलग से पहचान मिली है।
1: बिल्कुल, ये रंगों का प्रयोग कम से कम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कागज या कपड़े पर खाका बनाकर उसके मध्य में बांस की सीख में बंधे कपड़े या धागे से अपेक्षित रंगों को भरने में भी इन्हें महारत हासिल है कि जहां पर बहुत जरूरी होता है वहीं पे ये रंगों का उपयोग करती हैं। और देश विदेश में गोदावरी दत्त के चित्रों की अब तक अनगिनत प्रदर्शनी लग चुकी हैं। इन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनकी सहायता भी की है, उनके कई शिष्यों को राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिल चुकी है। उन्होंने कागज के अलावा रेडीमेड वस्त्र, शॉल और कुशन कवर और साड़ी और जैकेट आदि पर, ये इतनी सारी जो चीजें, इन सब पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के चित्र को बढ़ावा दिया है, बनाया है,
0: और बहुत सारे सम्मान भी इसके लिए वो पा चुकी हैं। देश विदेश में अलग अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, और 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल, ये जो मधुबनी पेंटिंग है सचमुच धरोहर है जो उन्होंने बनाकर हमें सहेज कर दी है।
1: बिल्कुल,
0: और अब सुने एक गाना,
1: एक गीत।

तो भाई गीत के बाद में अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की, उन बोलियों की जो कि अब विलुप्त हो रही हैं। और हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, संस्कृति हैं यहाँ की, और जो सालों से चली आ रही हैं। और

0: ही है इसको लेके चलती है जो
1: कहते तो हैं कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे पानी।
0: इन जो 19,000 से बताया आपने जो भाषाएं हैं उनमें से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं, और इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा, ये संविधान में सूचीबद्ध है।
1: ये तो तुमने उन भाषाओं के नाम बताए जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनकी अपनी कोई लिपि नहीं, कोई शैली नहीं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं को सुरक्षित तरीके से रखने की जरूरत है ताकि लोग उनके बारे में जाने। और ये हो सकती है जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुराक, शोरसैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही, तुलू, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की ये भी एक लंबी लिस्ट है।
0: बिल्कुल, हो भाषा भी देखिए कितनी भाषा ऐसी है जो हमने कभी सुनी ही नहीं
1: था। हाँ,
0: हो भाषा है, कचाची है, कातमपुरी है, कारबी, खासी, कोडवा, कुकबराक,
1: कहते हैं नाम भी शायद हमने सुने नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि विलुप्त हो रही हैं ये भाषाएं।
0: ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना पता भी नहीं है, तो अगर कुछ ही बोलने वाले जो बच्चे हैं तो अगर इनके हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।
1: बिल्कुल, और ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो समय संकट में है, और ये जो विविधता का संसार है ना, ये छोटा हो रहा है, सिमट रहा है। भारत में भाषाओं के लुप्त होने का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं आरती, कि करीब 4-5 भाषाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, या कुछ भाषाएं लुप्त हो गई हैं। भाषाओं में खासतौर पर उनकी भाषाओं का जल्दी विलुप्त होने को खतरा है जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है। अगर लिपि से हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस अब कुछ 100 लोग ही रह गए हैं। अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट एंडमनीज, निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा भी विलुप्त की ओर बढ़ रही है। सेंटिनलीज जो अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, त्रिपुरा की है साइमार, और हिमाचल प्रदेश की माझी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बोलने जाने वाली तोड़ा, इसी तरह निहाली, दारमा, गांगते, सुमी, जाखरिंग, महासुई, ऐसी कई बोलियां हैं जिन्हें संजोकर रखने की कोशिश बहुत जरूरी है।
1: आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो जिन भाषाओं के तुम नाम ले रही हो ना आरती, सच में कुछ भाषाओं के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ये जिक्र ही पहली बार हुआ है, और तब आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात आ रही है कि ऐसी भाषाओं के जिन्हें हमें नाम भी नहीं पता, तो ये अगर कहीं विलुप्त हो जाएंगी तो इनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे सुनने वाले भी इस बात से बिल्कुल जरूर वाकिफ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग विशेष होते हैं जिनकी पहचान है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं जिनकी पहचान होती है ये। और देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि विलुप्त होती भाषण और बोलियां अगर काम हो रहा है तो शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारी संस्कृति, लोक कथाएं, गीत, परंपराएं, पुरानी पीढ़ियों का अनुभव, ये भी धीरे धीरे खो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमें घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए, बच्चों को उसके शब्द, उसके लोकगीत, ये सभी चीजें सिखानी चाहिए। भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे बोलने वाले गर्व से उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये बहुत सही बात है, कई बार हमें अपनी ही भाषा अगर बोलने में शर्म महसूस होती है या हमें लगता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो ये शर्मनाक बात होती है। अपनी भाषा को सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा।
0: बिल्कुल, और बोलियों में लोक जीवन की जो अद्भुत संवेदना छुपी होती है ना, वो और कहीं से नहीं मिल सकती। किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली वहां की मिट्टी की खुशबू, मौसम का मिजाज, रिश्तों की आत्मीयता और लोकमानस की सहजता दिखाई पड़ती है, जो अगर हम भाषाओं को अगर खत्म हो जाएंगे ये, तो उनके साथ में जुड़ी हुई उनकी परंपराएं जो हैं, जुड़ी हुई जो उनके लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है, वो भी सब खो जाएगी।
1: एक संदेश के माध्यम से हमारे श्रोता ने बताया है कि भाषाएं और बोलियों को सीडेक के GIST विभाग ने डिजिटल रूप से अच्छे से संजोया है। देश भर की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को डिजिटल स्क्रिप्ट्स और डिजिटल टूल्स के जरिए बहुत आसान बनाया जा रहा है। और अब जब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो ये एक समय हो चला है कि हम एक छोटा सा अंतराल लें।

0: आरती, हम बात कर रहे थे विलुप्त होती हुई भाषाओं और बोलियों के बारे में।
1: बिल्कुल, एक संदेश भी है इसी को लेकर। एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विलुप्त होती जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं वो या बोलियां जो आजकल बहुत कम बोली जा रही हैं, हम अपनी मातृभाषा को बहुत कम बोल रहे हैं, ज्यादातर हम इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं या मतलब बाहर की भाषाओं का उपयोग करते हैं। आम बोलचाल में हम कहना चाहेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है उसका पता हमें उसी से पढ़
0: सकता है। जितना महत्व विदेशी भाषाओं का है, या अगर हम कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं तो सही है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका बहुत हमें लगता है कि ये आनी जरूरी है। किसी अन्य देश में जाते हैं तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हमारे काम आती है, लेकिन जो हमारी मातृभाषाएं हैं या जो हमारी मिट्टी से जुड़ी बोली है उसका अपना अलग महत्व है।
1: और साथ ही हम जहां रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह की भाषा को अपनाना तो बहुत जरूरी है। उस जगह की भाषा का भी हमें ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए।
0: और ऐसे ही कुछ गीत होते हैं भाषाओं से सजे हुए। फिलहाल जो हम गीत सुने, कोई लोकगीत नहीं है, लेकिन भाषाओं का बड़ा महत्व होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सुनते हैं ये गीत।

0: उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक बात लिखी है। वो लिखती हैं कि मतलब उस समय का जब समय था तो गांवों में विवाह समारोह में वृद्ध माताएं जो मीठे सुर में स्थानीय बोली में गीत गाती थीं तो चार चांद लग जाते थे। वो अब कहाँ हैं वो लोग, वो सुरीले गीत अब कहाँ हैं, वो जो हंसा देते थे कभी रुला देते थे, अब डीजे का कान फाड़ू संगीत है बस। यानी कि जो भाषाएं जो बोलियां होती थी ना, उन बोलियों में जो गीत संगीत होता था उसका एक अपना रस आता था।
1: बिल्कुल, उसमें भले ही कोई वाद्य यंत्र ना बज रहा हो लेकिन जब एक साथ सुर में समूह में महिलाएं या पुरुष उन लोकगीतों को गाते हैं, कई बार चौपाल पर बैठकर या कई बार काम करते हुए महिलाएं गाती हैं उन गीतों को, तो उनका एक रस एक आनंद अलग ही होता है। इसी तरह से अगर हम भोजन की भी बात करें तो कुछ बहुत लोकप्रिय भोजन होते हैं जो किसी प्रांत विशेष में बनाए जाते हैं, किसी जगह की खास पहचान होते हैं, और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भोजन हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, इस बात का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि खाना हमारी जिंदगी के लिए जरूरत है, जिंदगी का मकसद लेकिन यह नहीं हो सकता। और बात केवल भोजन की नहीं, ये हमारी जीवन शैली की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर भी विचार करने की बात है। हम बात कर रहे हैं कि मुझे क्या कहना है इस सेगमेंट की, जीने के लिए खाना या फिर खाने के लिए जीना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। और जीवन के लिए खाना का मतलब होता है कि भोजन हमारे जीवन को स्वस्थ ऊर्जावान और सक्रिय रखने का साधन है। हम खाना खाते हैं ताकि शरीर को पोषण मिले, स्वस्थ रहें, ताकत मिले हमारे शरीर को, और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकें, सारे काम कर सकें, घूम फिर सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, जिंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी सकें, सारे काम करें जिसमें अपने सपने रिश्ते जिम्मेदारियां उन्हें भी अच्छे से निभा लें, और स्वाद के साथ संतुलन इनका बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यानी खाना जीवन का हिस्सा है लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है।
0: नहीं है। और समस्या तब शुरू होती है जब भोजन जो है वो हमारी खुशी दिनचर्या और जीवन का केंद्र बन जाता है। जब हर समय हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊं, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कुछ मीठा हो जाए, और स्वाद के लिए बार बार हम अपनी सेहत जरूरत और संतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले धीरे धीरे जीवन के लिए खाने के बजाय खाने के लिए जीने लगते हैं, खाने को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए, फिर हमारा ध्यान स्वास्थ्य से ज्यादा स्वाद पर आ जाता है।
1: इसीलिए देखिए हमारे श्रोताओं ने भी बड़े अच्छे संदेश भेजे हैं इस बात पर। एक श्रोता का कहना है कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इस फर्क में सोच है, ये फर्क का सोच है। जो खाने के लिए जीता है उसके लिए पेट ही भगवान है। हाँ। और पैसा समय ऊर्जा सब स्वाद के पीछे लग जाती है, और सेहत अनुशासन लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वहीं जीने के लिए खाने वाला इंसान ईंधन समझता है, खाने को ईंधन समझता है और संतुलित खाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग तेज हो, और वो अपने परिवार काम पढ़ाई और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। और खाना जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं है। अगर साधन ही साध्य बन जाएगा तो हम स्वाद के गुलाम बन जाते हैं, और अगर साधन को सही इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी है,
0: बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाया कि खाने के लिए जीना नहीं है बल्कि जीने के लिए खाना होता है। तो हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। भोजन जीवन की जरूरत और खुशी दोनों है लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। स्वाद का आनंद लें लेकिन भोजन की अति ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाएं। जो आखिर खाना अच्छा वही है जो तन को ताकत और मन को संतोष दे। मतलब अगर कोई चीज आपको मन कर रहा है खाने का तो उसको थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लीजिए, जरूरत नहीं कि उसको बहुत ज्यादा आप खा लें।
1: बिल्कुल, ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, और कार्यक्रम में संतुलन बनाए रखने के लिए हम बीच बीच में बातों के साथ
0: गीत सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तन्हाई में होते हैं यानी अकेलेपन में होते हैं, तो उस वक्त उन्हें कुछ सूझता नहीं सिर्फ खाने के सिवा। और इस तरह से अकेलेपन की वजह से या कोई काम ना होने की वजह से खा कर भी वो बहुत सारे सेहत पर नुकसान या विपरीत असर ले लेते हैं।
1: कई लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो भी खाते हैं, जब बहुत खुश होते हैं तो भी खाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वजन पे भी असर पड़ता है।
0: तो खाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए लेकर आ सकता है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि लगातार जरूरत से ज्यादा खाना खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ जाती है, इससे मोटापा और गंभीर बीमारियां जैसे कि बहुत सारी डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती हैं या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो सकती है, और पेट फूलना, असहज महसूस होना, जी मिचलाना या भारीपन, सुस्ती, थकान रहना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाएं, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं और फाइबर से भरपूर सब्जियां लें और रोज हल्का व्यायाम या सैर जरूर करें।
0: हम जो बात कर रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं आरती कि स्वादिष्ट खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना जीवन की खुशियों में से भी एक हम कह सकते हैं कि है। भोजन केवल पेट भरने का साधन भी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में भोजन का संबंध प्यार, परिवार, उत्सव भावनाएं, इन सब से भी है। परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना, दोस्तों के साथ चाय पीना, त्योहारों पर मिठाई बनती है घरों में तो वो मिठाइयां खाना, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, कुछ ये छोटे छोटे सुख होते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इन सुखों को अगर हम अपनी जरूरत बनाकर इन्हीं में ही डूबे रहेंगे नुकसान तब हो जाता है।
1: बिल्कुल, जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो अंतर इतना है कि भोजन का आनंद लें, भोजन को अपनी जिंदगी पर हावी कभी ना होने दें। इसीलिए ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही सटीक बैठती है कि भोजन का आनंद जरूर लीजिए लेकिन भोजन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए।
1: बिल्कुल। और जीवन की सुंदरता या असली संतुलन वो है जिसमें हम स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वाद का आनंद भी लें, और कभी कभार मनपसंद मिठाई खा लेना कोई गलत नहीं है, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना भी गलत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा ऐसे भोजन ही बेहतर है जो शरीर को पोषण दे और मन को संतुष्टि भी दे।
0: हमारे श्रोता का कहना है कि भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है लेकिन स्वास्थ्य उस आनंद को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह के व्यंजन, फास्ट फूड और बाहर का खाना हमारी आदतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी कभार स्वाद के लिए खाना ठीक है लेकिन यदि यही स्वाद हमारी सेहत पर हावी हो जाएगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। भोजन का आनंद लें मगर भोजन को जीवन का केंद्र ना बनाएं। याद रखना है कि खाना जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता भी हैं वो जो कहते हैं कि जिंदगी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदगी नहीं। खाना हमें ऊर्जा देता है लेकिन असली स्वाद तो उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम जीते हैं। अपनों के साथ बैठना, हंसना, बातें करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, थाली भरने के साथ साथ दिल भी खुशियों से भरा रहे, शायद यही खूबसूरत जिंदगी है। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कोई कोई खाने के इतने शौकीन होते हैं कि लगता है कि शायद ये खाने के लिए ही जीते हैं, बस जितना सही है उतना ही खाना चाहिए, स्वाद और लोभ में अधिक नहीं खाना चाहिए।
0: और इतना स्वस्थ हमें रहना है कि जीवन का हम आनंद ले सकें।

खाने का नहीं ले। और इस बात को अगर हम एक पंक्ति में समझे आरती, तो खाना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जिंदगी खाने को बेहतर बनाने में अगर बीत जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की, है ना, जो हमारे काम आ सके। हमारे जो कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया जो हम पहनना चाहते हैं, बहुत हमारे पसंद के कपड़े हैं, वो जल्दी खराब ना हो, उसे बचाने के लिए वो कौन सी
1: उनकी टिप्स जो है? लाइफ है यानी कि उनकी जो जिंदगी है,
0: उम्र दराज हो।
1: बिल्कुल, अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो कपड़ों की सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हमारी सेहत के लिए हम अच्छी खुराक लेते हैं, लेकिन कपड़ों की सेहत के लिए कि उन्हें किस तरह के डिटर्जेंट में धोना चाहिए, तेज धूप में सुखाएं कि नहीं सुखाएं, रंग को कैसे सलामत रखें, ये सारी बातें शामिल होती है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाए हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि जिन कपड़ों का रंग निकलता है उसे अलग से धोना चाहिए, उन्हें या तो ड्राई क्लीन करवाइए या तुरंत भिगा के धोना चाहिए, बाकी कपड़ों से अलग रखना, और नाजुक कपड़ों को बहुत बार नहीं धोना, और बारिश के बाद कपड़ों को थोड़ी धूप लगाना, और जो कपड़े कभी भी पहनने में नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं आते पहनने में, तो उसे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए ताकि वो पहन सके, वरना उसे रखे रखे कपड़े उसमें भी ऐसा होता है कई बार, कुछ बार जो बारिश के दिन होते हैं, मैंने भी निकाले तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फफूंद जैसी जम जाती है, कपड़े खराब फटने लगते हैं जल्दी।
1: हाँ, ये तो जो आपने कहा ना, कई बार अलमारी में सहेज कर रख देते कि भाई हमारी बहुत पसंदीदा कपड़े ना, बहुत खास मौका आने पर पहनेंगे, और कुछ सालों बाद जब निकालते हैं तो हाथ में लेती है वो कपड़े से चिर जाता है, फट जाता है, तो वो रखे रखे भी कपड़े खराब होते हैं।
0: अगर आपके इतनी पसंद के कपड़े हैं तो आप किसी पसंद के इंसान को या किसी को जरूरतमंद को आप उन कपड़ों को दे दीजिए जिसकी वो पहने उनके काम आए।
1: बिल्कुल, एक संदेश में कहा गया है कि कपड़ों की उम्र हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, उन्हें सही तरीके से धोना, धूप में बहुत देर तक ना सुखाना।

0: मौसम के हिसाब से साफ करके रखना और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना, अच्छी तरह से तह करके रखना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखती हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता जो है वो कहते हैं कि कपड़ों की उम्र भी थोड़ी हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, जैसे कि उनको सही तरीके से धोना चाहिए, यानी कि अच्छे किसी साबुन में डिटर्जेंट में धोएं और धूप में बहुत देर तक ना सुखाएं, क्योंकि धूप के वजह से उनका रंग उड़ सकता है। और मौसम के हिसाब से उनको साफ रखना चाहिए और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना चाहिए, अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से कपड़े लंबे समय तक नए के नए बने रहते हैं।
0: तो और भी संदेश पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं।

0: देखो ना, बहुत अच्छे अच्छे संदेश आ रहे हैं।
1: बिल्कुल, एक हमारे जो साथी वो कहती हैं कि सर्दियों के दिन में जब हम गर्म पानी से कपड़े धोते थे तो मेरी नानी मना करती थी और बोलती थी गर्म पानी से कपड़ा धोने से कपड़े कमजोर हो जाते हैं, यानी सही बात है, उनके रेशे कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से कपड़े जल्दी खराब भी होते हैं। और साथ ही एक और साथी जो कहती है कि हमेशा कपड़ों को उल्टा करके ठंडे पानी से धोना चाहिए और उनको सीधे धूप में न डालकर शेड में सुखाना चाहिए ताकि कपड़े का रंग हल्का ना हो।
0: एक श्रोता का कहना है कि अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करें, हल्के रंग के कपड़ों को अलग से धोएं, कॉटन और सिल्क के अनुसार ही आयरन का तापमान भी आप बराबर रखिए, अलमारी में नमी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। और अब हम ध्यान रखते हैं कि समय कह रहा है, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम चलते चलते सुन लेते हैं।

0: आज के सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।